0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कभी सोचा है जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ कुछ मिनट के लिए मिलते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी मेहरबानी सालों तक याद रहती है। एक बार की बात है, मैं सफर पर था, फोन की बैटरी खत्म, पॉकेट में बस थोड़े से पैसे और बारिश इतनी तेज कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। हर इंसान अपनी ही जल्दी में था, मैं बस एक कोने में खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी और बोले, बेटा भीगने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत मत भीगना। मैं उनके साथ कुछ दूर तक चला, फिर मेरी बस आ गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और बस में बैठ गया। खिड़की से देखा, वो वहीं खड़े थे बारिश में भीगते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। ना उनका नाम पूछा, ना कभी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन आज भी जब भी बारिश होती है मुझे उनकी वो बात याद आती है, भीगने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत मत भीगने देना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी एक छतरी, एक मुस्कान, एक हौसला देने वाला जुमला या दो मिनट की मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए अगर आज जिंदगी आपको मौका दे तो किसी अनजान इंसान के लिए वो वजह जरूर बन जाना, जिसकी वजह से उसका इंसानियत पर भरोसा और मजबूत हो जाए। क्या पता आप उसकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाते हो।
0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

चेयर सुबह है इन द शो ऑल इज वेल मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त हम एक गेम खेलते हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसके अंदर ना तो मैं और आप रूबरू होते हैं। तो इस गेम का नाम है और इसमें मैं आपको एक पहेली पूछता हूँ और आप मुझे उसका जवाब बताते हो। तो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि राजा महाराजाओं के कभी ये बहुत आया काम, संदेश इसने पहुंचाए सुबह हो या शाम, बताइए ये क्या चीज है। फिर से दोहराता हूँ कि राजा महाराजाओं के ये बहुत आया काम, संदेश इसने पहुंचाए सुबह हो या शाम, बताइए ये कौन है। डीएम कीजिएगा व्हाट्सएप पर 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। ये बहुत असल चीज है और इसके जरिए ना तो बहुत संदेश भेजे हैं और इस पर तो गाने भी बने हैं। अब एक हिंट देता हूं कि सलमान खान का एक गाना भी ना तो इसी पर बना है। अब इतना सब बताया तो अब इसका जवाब भी दीजिएगा जल्दी से जल्दी 9359320080 इस नंबर पर। और बाकी तो सुनते रहिएगा All is well, Arte and Nanaka morning show, freshness live radio ka flow, on MGM 90.8 FM.

दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि किसी और से नहीं, हमें खुद से मुकाबला करना है। कल हम जैसे थे, आज हमें उससे एक कदम आगे बढ़ाना है। यही होता है सेल्फ ग्रोथ। सो लाइफ मंत्रा में आज बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। अक्सर लोग पूछते यार बदलाव कैसे आएगा, तो जवाब सीधा है छोटे छोटे कदमों से। अगर रोज 10 पन्ने पढ़े, रोज 10 मिनट खुद से बात की, या फिर किसी बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ा, तो समझ जाओ कि आप आगे बढ़ रहे हो। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से तेज दौड़े, इसका मतलब है कि आप कल वाले खुद से बेहतर बनो। याद रखो, कंपैरिजन दूसरों से करोगे तो जलन बढ़ती है, और कंपैरिजन खुद से करोगे तो इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। तो यही एक सिंपल सा मैजिक ट्रिक है। तो आज का लाइफ मंत्र यही है कि हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, और हर रात अपने आप पर गर्व करो कि कल से आज तुम बेहतर बने। क्योंकि असली जीत यही है दोस्तों, खुद की लिमिट्स को हर दिन तोड़ते जाना और लाइफ में कुछ बेहतर करते जाना। तो लाइफ मंत्रा विदार जी अदनान में ये फतेह की बात याद रखिएगा। ऐसी बेहतरीन मंत्रों के लिए हर दिन सुनते रहिएगा मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ। All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो, on MGM 90.8 FM।

है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। तो चलिए फिर शीतल जी की फरमाइश कबूल करते हैं, उनका फेवरेट सॉन्ग प्ले करते हैं। बरा तुमची काही फरमाइश असेल तर व्हाट्सअप करा 9359320080 वर 9359320080। जल्दी से जल्दी फरमाइश आपकी बताइए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

इतने सालों से हम कितना मिलावटी खाना खा रहे थे ना, ये अब जाके हमें पता चलता है। Hi, myself, RJ Adnan, and you're listening MTM 90.8 FM. और FDA अपने शहर में भी कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट या कुछ फेमस मिठाई की दुकानें हैं जहां पर हम शहर वासियों को आग बंद करके भरोसा था कि यार यहाँ पर तो बहुत अच्छा मिलता होगा, स्वीट हो, खाना हो, क्योंकि इतनी फेमस दुकानें, हर किसी को लगता था कि यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पर हम खा सकते हैं, हाइजीन मेंटेन होती होगी, सब सफाई होगी। लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते, वैसा होता है, जो दूर से दिखता है वैसा होता ही नहीं है, उससे अलग ना रियलिटी होती है। तो यही रियलिटी चेक FDA आजकल हमें दे रहा है कि जनाब आप जिस होटल में खाते हो ना, वो आपके हिसाब से एकदम क्लीन होगी, आपको लगता होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अपने शहर में के ऐसे बहुत सारे होटल्स है जिसके लाइसेंस सील कर दिए गए है, एंड इमरती के लिए अपने शहर में एक बहुत फेमस होटल थी, अगर इमरती का नाम लिए ना तो उस होटल का नाम आता ही था। लेकिन वहां पर भी पता चला है कि हाइजीन तो बिल्कुल थी भी नहीं, और जो तेल वो यूज करते थे वो भी ठीक नहीं था। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप किसी भी खाने में कलर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो डेंजरस कलर होता है वो भी इस होटल में यूज हो रहा था, तो इस वजह से इस होटल का जो लाइसेंस कर दिया गया है। और बस ये एक होटल की बात नहीं, अपने शहर में ऐसे बहुत से होटल्स है, तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी, हाइजीन जीरो आपको दिखाई देती है। तो समझिएगा, अगर आप किसी फेमस होटल पर भी जा रहे हो ना खाने के लिए, तो चेक कीजिएगा कि वहां पर सच में हाइजीन मेंटेन है और खाना साफ सुथरा मिलता है या फिर मिलावटी मिलता है। भाई जिसका तसा नस्ता मनु जग फस्त, एक खरी गोष्ट है, तो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून।

गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। जब कभी ना तो पुराने किसी बैंड की बात निकलती है तो जल इस बैंड का नाम और उसके गाने हमारे जहन में बजने लगते हैं। ये पॉप रॉक बैंड था, गौहर मुमताज इसके फाउंडर थे और इसी बैंड से अतीफ असलम ये एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया था। इनका पहला गाना था ये गाना अपने समय में एक म्यूजिक का नया चेहरा बना था और बहुत सुपरहिट रहा था और आज तक ये गाना बहुत सुपरहिट है। यहाँ तक कि जल इस बैंड के तकरीबन जितने भी गाने हैं ना उतने सब आज के वक्त में भी उतने सुपरहिट है और उतने ही लोगों को पसंद आते हैं। और इसी फिल्म का अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में ये गाना कलयुग फिल्म में 2005 में लिया गया था। चलिए फिर यही गाना भी एंजॉय करते हैं जल इस बैंड से। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: बांगाली है तुम, इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है।
1: तो क्या करूं?
0: जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा।

0: तुझ्या इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844-44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 or 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University N6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: आपको पता है आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजी अदनान आपके साथ
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकात तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजी अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता है। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी व्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार मैं, ज्ञानी आदमी हूं, RJADNAN ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे, सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।

मॉर्निंग आरजे अदनान आपके साथ इन द शो. और हम शो के स्टार्टिंग में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है और इसमें मैं आपको ना एक पहेली पूछता हूँ और आप मुझे उसका सही जवाब बताते हो. तो आज की पहेली कुछ ऐसी थी कि राजा महाराजाओं की ये बहुत आए काम, संदेश इसने पहुंचाए सुबह हो या शाम, क्या ये चीज है? इसका जवाब है कबूतर. जी हाँ, कबूतर. राजा महाराजाओं के बहुत काम आए थे और इनका काम था संदेश पहुंचाना यहाँ से वहां पर. और मैंने हिंट दे दिया था कि सलमान खान का इस पर एक गाना भी था, कबूतर जा जा जा. सो इसका जवाब है कबूतर. और आज के इस पहेली का एकदम सही जवाब दिया है स्वाति काले ने. सो कांग्रेचुलेशन स्वाति, आज आप विनर बन चुकी हो. आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है. सो स्वाति जी ने तो अपना गिफ्ट जीता, आप भी अपना गिफ्ट जीत सकते हो मेरे पहेलियों के जवाब देकर. सो दीजिएगा जवाब और सुनते रहिएगा.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोम और अच्छा बीता होगा। नया हफ्ता शुरू हो चुका है तो आइए इस शाम को थोड़ा सुकून और अच्छे संगीत के नाम करते हैं। ऑफिस हो, पढ़ाई हो या घर का काम, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का। हम आपके साथ है लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक शानदार गाने जो आपके शाम को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो चाय या कॉफ़ी का कप तैयार रखिए, मुस्कुराइए और साथ जुड़े रहिए। अगर आपका कोई पसंदीदा गाना है या किसी अपने के लिए कोई खास मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। ऑन आर इंस्टा हैंडल, मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_, आप मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पे भी MJ90.8 FM। एंड ऑफकोर्स चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के पहले खूबसूरत गाने की शुरुआत। क्यों आप सुनते रहिए दिल से ओनली ऑन MJ90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। नई सुबह, नया दिन और नया हफ्ते की शुरुआत। सोमवार कई लोगों को थोड़ा भारी लगता है, लेकिन याद रखिए हर नया सोमवार अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। अगर पिछले हफ्ते कुछ अधूरा रह गया, कोई गलती हो गई या मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुँचाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सफल वही होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। इसलिए आज खुद से बस एक वादा कीजिए कि कल से बेहतर आज करेंगे और आज से बेहतर कल। तो मुस्कुराइए, पूरे जोश के साथ अपने काम की शुरुआत कीजिए और यकीन रखिए कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं एक शानदार गाने की ओर। एंड ऑफ कोर्स आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, जहां हर दिन की शुरुआत होती है अच्छी सोच और बेहतरीन गानों के साथ। ओनली ऑन MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मसाला।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ कितनी राहत लेकर आता है। कुछ दिन पहले तक बिना एसी और पंखे के रहना मुश्किल लगता था, लेकिन अब देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कई घरों में एसी और पंखे को भी थोड़ा आराम मिल गया। बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और हल्की ठंडी हवा, बस यही तो है मानसून की सबसे बड़ी खासियत। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय, पकौड़े और अपने पसंदीदा गाने, इनसे बेहतर साथ और क्या ही हो सकता है। हाँ, इस मौसम का मज़ा लेते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। भीग जाए तो जल्दी कपड़े बदल लीजिए, साफ पानी पिए और जहाँ भी पानी जमा हो वहाँ सावधानी से चलिए। तो इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए, खुलकर मुस्कुराइए और अगर एसी और पंखा बंद है तो समझ जाइए कि मानसून ने अपना जादू बिखेर दिया है। इसी प्यारे मौसम के नाम अब सुनते हैं एक और शानदार गाना इन द शो दिल से, ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ एक अलग ही एहसास लेकर आता है। ठंडी हवा, हल्के हल्के फुहारे और चारों तरफ हरियाली, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। ऐसे मौसम में कुछ गाने अपने आप याद आ जाते हैं, ऐसे गीत जो दिल को सुकून देते हैं और चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। जब मौसम सुहाना हो तो संगीत का मज़ा भी कई गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा गाना जो हमेशा से ही सदाबहार रहा है, जिसे सुनते ही बारिश, प्यार और खूबसूरत मौसम की यादें ताज़ा हो जाती है। ये गाना सालों से लोगों का पसंदीदा रहा है और आज भी उसी तरह दिल को छू जाता है। तो अगर आप भी इस प्यारे मौसम का आनंद ले रहे हैं तो कुछ पल अपने लिए निकालिए और इस खूबसूरत गाने का मज़ा लीजिए। पेश है उस सदी का फेवरेट सॉन्ग इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजी 94.8 FM। साथ है तो बात है।
1: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एमजीएम यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्स इज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन एंड रिसर्च facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.
4: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? नया हफ्ता और उसके साथ लंबा ट्रैफिक। आज सुबह शायद आप में से कई लोग सड़क पर जाम में फंस गए होंगे, कई गाड़ियों की लंबी लाइन तो कई हॉर्न की आवाज। लेकिन याद रखिए, ट्रैफिक में गुस्सा करने से रास्ता जल्दी साफ नहीं होता। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पेशेंस रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित सफर को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। 2 मिनट पहले पहुँचने से ज्यादा जरूरी है सही सलामत पहुँचना। और अगर ट्रैफिक में फंस भी जाए तो तनाव लेने की जगह अपने पसंदीदा गाने सुनिए। अच्छा संगीत सफर को थोड़ा आसान और मन को थोड़ा हल्का बना देता है। तो मुस्कुराते रहिए, धैर्य रखिए और इस सोमवार की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। इसी के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, क्योंकि अच्छे गाने हर सफर को यादगार बना देते हैं। ओनली ऑन एमजे 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार आते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन दौड़ने वाला है। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस या कॉलेज की तैयारी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, मीटिंग्स, काम और पूरे हफ्ते की प्लानिंग। सच में सोमवार का स्केड्यूल काफ़ी व्यस्त होता है, लेकिन इस भाग दौड़ के बीच एक बात याद रखिए, काम ज़रूरी है लेकिन अपनी सेहत और मुस्कान भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर दिन बहुत व्यस्त हो तो बीच बीच में 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ज़रूर लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने पसंदीदा गाने सुनिए। यकीन मानिए मन हल्का हो जाएगा और काम करने की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस सोमवार को तनाव नहीं बल्कि अच्छी सोच और मुस्कुराहट के साथ बिताइए। नया हफ्ता नई उम्मीदें लेकर आया है, इसीलिए पूरे जोश के साथ इसका स्वागत कीजिए। और अब आपके इस व्यस्त दिन को थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं और इसके लिए सुनते हैं अगला ये स्पेशल गाना। आप सुनते रहिए ये अमेजिंग गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM, जहां हर पल आपके साथ है बेहतरीन संगीत के नाम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार यानी नए हफ्ते की शुरुआत, और अगर हफ्ते की शुरुआत अच्छी प्लानिंग के साथ हो तो पूरा हफ्ता आसान और बेहतर बन सकता है। सुबह सिर्फ 10 मिनट निकाल कर सोचिए कि इस हफ्ते आपको कौन कौन से ज़रूरी काम पूरे करने हैं, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। जब हमारे पास एक साफ प्लान होता है तो काम का तनाव भी कम हो जाता है और समय भी बचता है। याद रखिए, हर दिन बहुत बड़ा काम करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हफ्ते के अंत तक बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक बात, अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। काम के साथ आराम, परिवार और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी पूरा हफ्ता खुशी और एनर्जी के साथ बीतेगा। तो इस सोमवार खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, बिना जल्दबाजी के सही प्लानिंग के साथ पूरे हफ्ते को बेहतर बनाएंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग गानों की ओर। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, जहां हर दिन की शुरुआत होती है अच्छी बातें और बेहतरीन गानों के साथ। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते देखते सोमवार की शाम भी अब विदा लेने वाली है। सुबह से शुरू हुई भाग दौड़, काम, मीटिंग्स, ट्रैफिक और जिम्मेदारियों से भरा दिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उम्मीद है आपका पहला कामकाजी दिन अच्छा रहा होगा। अगर आज आपकी सारी योजनाएं पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता भी बाकी है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। अब थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, परिवार के साथ बैठिए, गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए, मनपसंद गाने सुनिए और दिन भर की थकान को मुस्कान के साथ अलविदा कह दीजिए। याद रखिए, एक अच्छे दिन का अंत हमेशा अगले बेहतरीन दिन की शुरुआत बनता है। इसलिए आज की छोटी छोटी खुशियों को याद रखिए और कल के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए। तो सोमवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम बढ़ते हैं मंगलवार की नई उम्मीदों की ओर। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने इन द शो दिल से, जहां हर शाम बन जाती है यादगार। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एमजीएम यूनिवर्सिटीज JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-447-4266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.
4: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

इतने सालों से हम कितना मिलावटी खाना खा रहे थे ना, ये अब जाके हमें पता चलता है। Hi, myself, RJ Adnan, and you're listening MGM 90.8 FM. और FDA अपने शहर में भी कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट या कुछ फेमस मिठाई की दुकानें हैं जहाँ पर हम शहर वासियों को आग बंद करके भरोसा था कि यार यहाँ पर तो बहुत अच्छा मिलता होगा, स्वीट हो, खाना हो, क्योंकि इतनी फेमस दुकानें, हर किसी को लगता था कि यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पर हम खा सकते हैं, हाइजीन मेंटेन होती होगी, सब सफाई होगी। लेकिन दिल के अरमा आंसू में बह जाते, वैसा होता है, जो दूर से दिखता है वैसा होता ही नहीं है, उससे अलग ना रियलिटी होती है। तो यही रियलिटी चेक FDA आजकल हमें दे रहा है कि जनाब आप जिस होटल में खाते हो ना, वो आपके हिसाब से एकदम क्लीन होगी, आपको लगता होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अपने शहर में के ऐसे बहुत सारे होटल्स है जिसके लाइसेंस सील कर दिए गए हैं, एंड इमरती के लिए अपने शहर में एक बहुत फेमस होटल थी, अगर इमरती का नाम लिए ना तो उस होटल का नाम आता ही था, लेकिन वहां पर भी पता चला है कि हाइजीन तो बिल्कुल थी भी नहीं, और जो तेल वो यूज करते थे वो भी ठीक नहीं था। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप किसी भी खाने में कलर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो डेंजरस कलर होता है वो भी इस होटल में यूज हो रहा था, तो इस वजह से इस होटल का जो लाइसेंस कर दिया गया है। और बस ये एक होटल की बात नहीं, अपने शहर में ऐसे बहुत से होटल्स है, तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी, हाइजीन जीरो आपको दिखाई देती है। तो समझिएगा, अगर आप किसी फेमस होटल पर भी जा रहे हो ना खाने के लिए, तो चेक कीजिएगा कि वहां पर सच में हाइजीन मेंटेन है और खाना साफ सुथरा मिलता है या फिर मिलावटी मिलता है। भाई जिसका तसर नस्ता मनु जग फस्त है, खरी गोष्ट है, तो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844-44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 or 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। जब कभी ना तो पुराने किसी बैंड की बात निकलती है तो जल्द इस बैंड का नाम और उसके गाने हमारे जहन में बजने लगते हैं। ये पॉप रॉक बैंड था, गौहर मुमताज इसके फाउंडर थे और इसी बैंड से अति वसलम ये एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया था। इनका पहला गाना था ये गाना अपने समय में एक म्यूजिक का नया चेहरा बना था और बहुत सुपरहिट रहा था और आज तक ये गाना बहुत सुपरहिट है। यहाँ तक कि जल इस बैंड के तकरीबन जितने भी गाने हैं ना उतने सब आज के वक्त में भी उतने सुपरहिट है और उतने ही लोगों को पसंद आते हैं। और इसी फिल्म का अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में ये गाना कलयुग फिल्म में 2005 में लिया गया था। चलिए फिर यही गाना भी एंजॉय करते हैं जल इस बैंड से। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 94.8 FM. साथ है तो बात है.
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है. एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे. वो रोज उस दुकान पर आती थी, अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ. और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था. चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था. एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है. और फिर वो दोनों हंस पड़े. कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की. कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था. कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है.
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान. ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM. साथ है तो बात है.
2: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
3: झालं रे. मी एमजीएम युनिव्हर्सिटी म्हणजेच एमजीएम युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे.
2: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
3: बीबीए, बीकॉम, एमबीए, फायनान्स, एचआर, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा, एमकॉम आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह एमबीए सुद्धा. याशिवाय तज्ज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
2: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।